0: छान वाटलं. थँक यू सो मच.
1: धन्यवाद.
2: कभी कभी पिक्चर आहे अमिताभ बच्चन.
3: दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी. ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी. मगर ये हो ना सका, मगर ये हो ना सका. और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं. गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं. न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग. भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी. इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर. मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है.

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें।
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलना भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
3: हाँ हाँ गाइए ना।

0: सर, इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत है सर?
1: जिंदगी में मैंने कभी हार नहीं मानी विनोद, और वो भी एक गलत तरीके से ओवरटेक करती हुई गाड़ी से।
0: That's the spirit, sir.

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो एक बात, एक बात लेकिन एक बात।

0: अच्छी है, न जाने क्या बात है उनमें, वो जब भी मेरी तरफ देखती है मुझे कुछ हो जाता है।
1: और जब मैं देखती हूँ?
0: अरे जब तुम देखती हो तो गजब हो जाता, होश उड़ जाते हैं, दिल पे काबू नहीं रहता, छुट्टी हो जाती छुट्टी।
1: अच्छा, सिर्फ देखने में इतना असर?
0: अरे सिर्फ देखने से नहीं, प्यार से देखने से। और फिर प्यार चीज ही ऐसी है, अरे लोग तो पागल हो जाते हैं पागल।
1: आप भी होने वाले हैं सर?
0: हाँ हो जाता अगर तुम मुझसे प्यार न करती।
1: ये किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ?
0: व्हाट, अभी तक नहीं कहा?
1: जी नहीं।
0: तो फिर फौरन इसी वक्त एडवांस कहो।
1: नहीं,
0: मैं भी कलवा के छोड़ूंगा।
1: कभी नहीं।
0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है?
1: क्या?
0: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
1: है।
0: गलियों पे निहार है?
1: हाँ है।
0: तो तुमको मुझसे प्यार है?
1: ना, ना, ना।

0: है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: देखा ना, मैंने कल वहाँ छोड़ा।

0: हुजूर ये गीत है या कवाली?
1: प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले।
2: आप तो लगते ही है कव्वाल, भैरवी भी गाएंगे तो आपके मुंह से कव्वाली लगेगी।
3: आ